इसी दौरान ये भी मालूम हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर महज झूठ और मन घड़त है। इसी से उनकी कुव्वत और बढ़ गई और उनके हौसलों और वलवलों में ताजगी आ गई। चुनाचे वो एक सख्त और खूनरेज जंग के बाद घेरा तोड़कर नरगे से निकलने और एक मजबूत मरकज के गिर्द जमा होने में कामयाब हो गए। इस्लामी लश्कर का एक तीसरा ग्रोह वो था जिससे सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी। ये ग्रोह घेराव की कार्रवाई का इल्म होते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटा। उनमें सर फहरिस्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब और अली इब्ने तालिब वगैरह रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन शामिल थे। ये लोग मुकातिलीन की सफ़े अव्वल में भी सबसे आगे थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए खतरा पैदा हुआ तो आपकी हिफाजत और दिफा करने वालों में भी सबसे आगे आगे थे। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा, और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز ایک نئی
3: سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
2: सुनते रहिए
4: السلام علیکم سامعین آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ احمد رضا سامعین آج ہم بات کریں گے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن آرٹس کے اندر فلم کے حوالے سے کیونکہ فلم جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈیمانڈیڈ ہے اور فلم کے اندر جو طلبہ طلبات خاص طور پہ کام کر رہے ہیں وہ کس بہترین انداز سے کر رہے ہیں جس کی مطرف اس وقت پورے دنیا ہے تو فلم پہ ہی بات کرنے کے لیے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے لیکچرار سید علی ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے ٹائم کا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف ذرا اپنے انداز کے ساتھ اور خود ہی کروا دیجئے گا ہمارے سامعین کو
5: آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا جیسے آپ بتا چکے ہیں میرا نام سید علی مظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ یو سی پی سے ہی ہے میں نے اپنا بی ایس میس کام یو سی پی سے 2023 میں مکمل کیا اس کے بعد میں نے انڈسٹری جوائن کی اور میں نے باہر کام کرنا شروع کیا فلم انڈسٹری میں ہی آئی وڈ ناٹ سے فلم انڈسٹری پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری ظاہر زیادہ ہے تو بھائی ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا اور میں نے ہم ٹی وی کے ساتھ کام کیا میں نے صنف آن ایک بڑا زبردست مشہور ڈرامہ ایئر وائی پروڈکشن میں میں نے اس میں کام کیا اس کی پروڈکشن ٹیم میں کام کیا اور ساتھ میں نے اپنا ایم فل اسٹارٹ کیا ان فلم ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ابھی وہ میرا پورا مکمل نہیں ہوا تھا خالی کورس ورک ہی ہوا تھا تو مجھے باہر سے اسکالرشپ کی آفر آئی اور میں یو کے چلا گیا اپنا ایم اے کرنے کے لیے اور میں نے باہر جا کے اپنا ایم اے مکمل کیا ڈاکیومنٹری پروڈکشن میں ڈاکیومنٹری پروڈکشن کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں نے وہاں کام کیا ڈاکیومنٹری فلم میکنگ میں کیونکہ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ ڈاکیومنٹری میں زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو فلم میکنگ اپنا سال ڈیڑھ سال لگانے کے بعد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں پاکستان واپس آیا اور میں نے جو یہاں کا ایم فل اپنا آدھا کورس ورک چھوڑ کے گیا تھا میں نے یہاں پہ اگر اپنا تھیسس سبمٹ کروایا میری جو کوالیفیکیشن ہے اس حساب سے میں ڈبل ایم ایس ہوں اور پھر مجھے یو سی پی میں نے جوائن کیا ایز این لیکچرار ریسنٹلی میں نے یو سی پی جوائن کیا ایز این لیکچرار اور بالکل میری جو فیکلٹی ہے دیٹ از فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن بٹ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے اندر سب ڈپارٹمنٹ بھی ہے تو جو ڈپارٹمنٹ ہے میرا وہ ہے ایف ٹی ڈی فلم ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
4: بہت خوب سر بہت خوب اور جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں یو سی پی کے حوالے سے کچھ بتایا اس سے بھی ریلیٹڈ مزے مزے کے سوالات ہیں جو ہم آپ سے کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فلم کے کچھ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں اور وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ہمیں فائدہ جو ہے وہ پہنچتا ہے
5: بالکل اس طرح ہے کہ یو سی پی ہمیشہ سے فلم پہ تو اس نے ہمیشہ سے فوکس کیا ہوا ہے جب میں یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھا تب یہاں پہ ایف ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا لیکن اسپیشلائزیشن تب بھی فلم میں ہوا کرتی تھی تو ایک تو پہلے ہی سیمسٹر میں اب میں آپ کی بات کروں گا اب پہلے ہی سیمسٹر میں جو نئے ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو انٹروڈکشن ٹو فلم ٹی وی اینڈ تھیٹر پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو بتا دیا جائے کہ اب فلم ٹی وی اور تھیٹر بھی کسی حد تک وہ چیز ہے کہ جہاں آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو اس کا سکل ہونا بھی آپ کے پاس بڑا ضروری ہے بیکاز ایک زمانے میں جیسے ہم بات کیا کرتے تھے بھائی جس کے پاس کمپیوٹر کا سکل ہے نا وہ ہر فیلڈ میں جا سکتا ہے آج جس کے پاس فلم کیا ہے فلم سے مراد ہے جو کیمرہ فریمنگ کر سکے ساؤنڈ کو دیکھ سکے لائٹ دیکھ سکتے ہر چیز کی ٹیکنیکل جس کے پاس نالج ہو وہ مارکیٹ میں کہیں بھی جا سکتا ہے بیکاز آج کل ہر انڈسٹری میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کو اپنی مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کروانے کے لیے ایک फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है, तो वही अच्छा कंटेंट क्रिएटर है जिसको फिल्म के बारे में पता है, जिसको उसमें तो यूसीपी की, जैसे आपने मेरे सवाल किया तो यूसीपी इंट्रोडक्शन टू फिल्म तो हमेशा से पढ़ा रहा है। अब जब से एफटीडी डिपार्टमेंट आया और एफटीडी के अलावा भी जब हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं फिल्म के, तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ फिल्म से ही रिलेटेड हैं, जिसमें से जैसे तीन सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। एक सब्जेक्ट है डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टीवी, जिसमें हम तैयार करते हैं स्टूडेंट को कि आपने डायरेक्टर का रोल कैसे निभाना है। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, के फिल्म के अंदर भी थ्योरीज हैं, लॉज हैं, सो हमने वो लॉ को फॉलो करते हुए, वो थ्योरी को फॉलो करते हुए हमने अपने स्टूडेंट को तैयार करना है कि किस तरीके से, किस खूबसूरत अंदाज से आप अपनी फिल्म को पर्दे पे लेकर आ सकते हैं, बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपके पास थ्योरीज की नॉलेज होगी। सो ये तो दो सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मेरे बाकी कुलीग्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसमें जेंडर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं फिल्म के, उसमें फाइनल प्रोजेक्ट है, हम फाइनल प्रोजेक्ट जैसा करवा रहे होते हैं। सो फिल्म के हवाले से आई थिंक सो यूसीपी जो है वेल इक्विप्ड है फैकल्टी वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी।
4: बहुत खूब, और हमने भी फिल्म पढ़ी जब मैं पहले सेमेस्टर में हम आए, हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाएगी और वाकई बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है। अगर आप नीयत से पढ़ें, शौक से पढ़ें, तो फिल्म वो आपको एंजॉय करवा के फिर आपको पढ़ाया जाता है। और यूसीपी में इस चीज को जो है वो बतौर स्टूडेंट मैंने भी इस चीज को अंदाजा लगाया, और क्योंकि हमने जब पढ़ा तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट थे। तो सर, फैसिलिटीज वगैरह में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है फिल्म के हवाले से वो कहाँ तक है?
5: जी मैं, मुझे इस कहने में कोई वो नहीं है कि यूसीपी के बाद जो फैसिलिटीज़ हैं फिल्म के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाता भी हूँ, मैं विजिट भी करता हूँ, मेरे अपने दोस्त पढ़ाते भी हैं वहाँ पे, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों जो फिल्म से रिलेटेड है। हमारे पास टॉप नॉच, एक स्टेट ऑफ द आर्ट आई वुड से प्रोडक्शन हाउस मौजूद है, जो जर्नलिज्म के लिए तो है ही है बट फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी बेहतरीन आपके पास है। आपके पास ग्रीन स्क्रीन, जिसको आप क्रोमा कटिंग कहा जाता है, जिसको आपके पास वो मौजूद है, आप वहाँ करके अपनी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मेकिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फैकल्टी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो टेक्निकल लोग हैं, जो आपको कैमरा, लाइटिंग और वो चीज़ें स्टूडियो के हवाले से समझा सकते हैं फैकल्टी से हटके। देन वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट एडिटिंग लैब, जिसको पोस्ट प्रोडक्शन लैब हम कहते हैं, हमारे पास मैक भी है उसके अंदर, हमारे पास विंडोज सिस्टम्स भी मौजूद हैं। सो जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो फिल्म की बात करते हैं, तो प्री प्रोडक्शन में आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें वाला के साथ साथ प्री प्रोडक्शन में आपके पास बेहतरीन फैकल्टी है जो आपको प्री प्रोडक्शन में मदद करती है। प्रोडक्शन के लिए आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट आपके प्रोडक्शन हाउसेज है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, एंड देन इन द एंड आपके पास एक एडिटिंग लैब है। सो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यूसीपी में ही फिल्म बना सकते हैं, यूसीपी की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं।
4: काफी बच्चे स्टूडेंट्स हैं यूसीपी के, वो यहीं पे प्रोडक्शन भी यहीं पे सारा सेट लगा के, काफी बच्चे
5: बिल्कुल ऐसे ही। और यूसीपी जो स्पेशली यूसीपी से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, वो बहुत सपोर्ट करता है। हमारे जो डीन है ही इंकरेज बेसिकली, अगर आप उनके साथ जाके अपने आइडिया शेयर करें तो वो आपको इनकरेज करते हैं। इसी तरह हमारे, मैं सर कामरान का नाम लेना चाहूँगा, सर कामरान बहुत इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट करो और लेकर आओ और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। और वो इसीलिए पॉसिबल है कि यूसीपी ने हमें ये फैसिलिटीज दी हुई हैं। हम जिस रेडियो स्टेशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट्री कोई स्टूडेंट यहाँ बनाता है यूसीपी में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरा ख्याल से उसको किसी नरेशन रूम की या किसी वॉइस ओवर रूम की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज वो रेडियो जिसमें हम बैठ के बात करें, यहाँ पे आके वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए वॉइस ओवर नरेशन रिकॉर्ड कर लेता है, जो यूसीपी ने फैसिलिटी दी हुई है। अगर आप बाहर जाके रिकॉर्ड करें तो आपकी स्टूडेंट की कॉस्ट कहीं से कहीं चली जाएगी। ये जो फैसिलिटीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं जो एक फिल्म स्टूडेंट को या एक मीडिया स्टूडेंट को लाजिम है देना। अगर आप ये फैसिलिटीज नहीं दे रहे तो आप टेक्निकली फिल्म सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे।
4: और दूसरा, ये बात भी आपकी मुझे बड़ी यानी कि मोटिवेट भी किया कि जितना मर्जी आप स्टूडेंट को टैलेंटेड ले, लेकिन उनको निखारने के लिए, उनको बनाने के लिए बेहतरीन फैकल्टी की, बेहतरीन असातज़ा कराम की ज़रूरत होती है, और वो भी बहुत प्रोफेशनल असातज़ा कराम है जो हमें पढ़ाते हैं। और वो जितना मर्जी बोर सब्जेक्ट हो, लेकिन जब टीचर हमें पढ़ाते हैं तो दिल तो हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है फील्ड्स के साथ, और जिस तरह वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जो हमें पढ़ाया जाता है, तो मैं इस चीज़ से बड़ा यानी कि अच्छा लगता है। क्योंकि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, हम भी अगर देखें, तो इस तरह नहीं पढ़ाया जाता जिस तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इस बात की जो मोतरफ है वो बाकी लोग भी हैं, खाली मैं ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, आप बाहर से पूछ सकते हैं जो फैसिलिटीज जिस तरह फिल्म के अंदर खासतौर पे दी जाती हैं, और वो हर एक बंदे का जो डायरेक्शन का एक उसकी फर्स्ट क्लास होती है वो उसे यहीं से मिल जाती है, वो बन के फिर मार्केट में जाता है, और ये चीज बड़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: एक बार फिर से सामईन आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 92.6 फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। आज के इस प्रोग्राम में हम फिल्म के हवाले से बात कर रहे थे कि फिल्म की जो दुनिया है उसमें अपने आप को किस तरह मनवाया जाए, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है वो फिल्म के तलबा तलबात को किस तरह फैसिलिटेट कर रही है, किस तरह सब्जेक्ट्स हैं उनको निखार के बना के मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के लेक्चरार सर सैयद अली मज़ाहिर साहब। सर फिर से एक बार आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर बताइएगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी फिल्म पढ़ा रही हैं, तो यूसीपी जो है वो उनसे डिफरेंट किस तरह होती है? वो उनके पास भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनके पास भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी टीचर्स हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो यूसीपी का स्टूडेंट है, यूसीपी के जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट कैसे हैं उनसे?
2: ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल उन यूनिवर्सिटी से भी करना चाहिए जिन यूनिवर्सिटीज़ का फिल्म के हवाले से नाम ज़्यादा लिया जाता है। मैं लाहौर की बात करूँगा, लेकिन हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट उनसे मार्केट में अगर आप देख लें, एनालिसिस करवा लें, मैं आपको दे भी सकता हूँ फिगर जितना मेरे पास है, हमारा स्टूडेंट क्यों ज़्यादा है, उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, जो हम पहले जिस पे बात कर चुके हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और हम अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हैं।
1: एग्जैक्टली
2: ऐसा नहीं है कि हमारे फैसिलिटीज़ में अगर काम 10 साल पहले हुआ था तो हमारा इक्विपमेंट 10 साल पुराना ही है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है हम अपने बच्चे को वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, इस टाइम पे AI का दौर है फॉर एग्जाम्पल।
1: बिल्कुल,
2: तो हम जो मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हम फिल्म के टीचर्स हैं, हम जब बैठते हैं आपस में तो हम यही कहते हैं कि अच्छा हमने जो अपनी असाइनमेंट डिजाइन करनी है उसमें हमने बच्चों को कहना है कि AI का इस्तेमाल करो।
1: सही,
2: लेकिन AI का इस्तेमाल उस तरीके से करेंगे जहाँ पे उनको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को नॉर्मल एनालिसिस दे देंगे फिल्म करने का तो वो तो ChatGPT करके आपको 2 मिनट में दे देगा, तो आपने एनालिसिस तो देना ही नहीं। अब आपने उनको AI, जब पता है आप मना भी करेंगे तो AI इस्तेमाल होनी है, तो आपने अपनी असाइनमेंट्स, अपनी चीजें उस तरीके से डिजाइन करनी है जिसमें आप AI इस्तेमाल कर भी लें तो आप कुछ नहीं कर सकते,
1: फायदा नहीं देगी।
2: या आप AI का ही असाइनमेंट देंगे, AI को इस्तेमाल करते हुए कुछ बना के लाओ, क्योंकि उसमें आपका दिमाग लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। तो ये इस तरह अपग्रेड कर रहे हैं। आई एम श्योर बाकी यूनिवर्सिटीज भी कर रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक रीजन है। जो दूसरा रीजन है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसपे अभी तक यूनिवर्सिटीज ने नहीं सोचा, बाकी क्यों बाकी बच्चे यूनिवर्सिटीज के, नामवर यूनिवर्सिटीज के बच्चे बाहर जाते हैं, एक हद तक मार्केट में अच्छा करते हैं, एक हद उसके बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपको नजर आना कम हो जाते हैं, लेकिन यूसीबी का बच्चा आपको सस्टेन करता हुआ नजर आता है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो फैकल्टी है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वो आपको दोनों महाजों के लिए तैयार करती है। कौन से दो महाज? पहला महाज वो है जो आपका प्रैक्टिकल महाज है, कैमरा कैसे चलाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, आपने बोलना कैसे है। मैं आपसे इस टाइम पे खाली फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मीडिया की बात कर रहा हूँ,
1: मीडिया की
2: मैं बोलना कैसे है, आपका तलफ्फुज़ कैसे निकलेगा, मतलब जर्नलिज्म में या रेडियो की अगर हमको बात
1: करें, सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं।
2: आपकी छोटी फिल्म के हवाले से आपको तैयार किया जाता है कि आपको कैमरा कैसे करना है, आपने ऑपरेट, लाइटिंग कैसी होगी, 3-पॉइंट लाइटिंग क्या होगी, मतलब शॉट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। मैं अब उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली महाज के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: जो दूसरा महाज है, जब दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं तैयार कर पाती और हम कर देते हैं, वो है उनकी नॉलेज जो थ्रेटिकल है।
1: सही, बहुत खूब।
2: प्रैक्टिकल तो आपने उनको तैयार कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना एक अरसे के बाद डाई डाउन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज जैसे हमने AI से बात शुरू की, उसका मकसद ही ये था स्टार्ट करने का कि आज AI ये कल कुछ और होगा। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे खिलाते जाएंगे, कैमरे पे, लाइटिंग पे, ठीक है आप खिलाते जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो हम लोग बड़ी बड़ी लाइटें लेके जाया करते थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, 100-100 मेगावाट की, उससे भी बल्कि ज्यादा लेके जाए। आज आपके पास छोटी छोटी लाइट्स आ गई हैं, RGB लाइट्स आ गई हैं, पॉकेट लाइट्स जिनको कहा जाता है, बट इफेक्ट उनका वही है,
1: पोर्टेबल
2: लाइट्स आ गई हैं, रॉड लाइट्स आ गई हैं, ठीक है। आपका पहले हमें रिफ्लेक्टर्स और वो चीजें लगानी पड़ती थी, अब इनबिल्ट चीजें आना शुरू हो गई हैं,
1: शाइनिंग की
2: पहले आपको वो थर्मापोल शीट लगानी होती थी, अब आपके साथ लाइटों के साथ चीजें आ रही हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ये चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप थ्रेटिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो यूसीपी अपने बच्चे को खाली प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाती, वो थ्रेटिकली भी बहुत स्ट्रांग करती है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का आपसे नाम लिया, फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इस सब्जेक्ट में मैं सिर्फ थ्योरीज पढ़ाता हूँ, फिल्म की क्या क्या थ्योरीज हैं, सिमोटिक थ्योरी क्या है, तो योनरा थ्योरी क्या है, फलाना थ्योरी, मतलब आप जो यूज नेम इट और वो थ्योरी का नाम फिल्म में मौजूद है, फेमिनिज्म थ्योरी क्या है फॉर एग्जांपल, तो मतलब थ्योरीज। तो अब बच्चे को क्या होता है कि जब मार्केट में जाता है ना तो उसके पास आइडियाज होते हैं, आइडिया सिर्फ तब होते हैं जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी होगी।
1: होगा बिल्कुल, बहुत खूब। और हम तो फिल्म सिर्फ वैसे सामान देख लेते हैं, लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिएगा कि फिल्म के पीछे कितने बड़ी कहानियां होती हैं। फिल्म एक पूरी बजाहर तो हमें नजर आती है कि एक पूरी वीडियो चल रही है, लेकिन उसके पीछे जो थेरीज होती हैं, उसके पीछे जो कहानियां होती हैं, उसको किस तरह बनाया जाता है और उसमें उन किरदारों को किस तरह आपके देखने वालों के दिल और दिमाग में उतार दिया जाता है, ये बहुत बड़ा फन है। और ये जो है यूसीपी के जो तलबा तलबात हैं उनमें भी खासा नजर आता है, उनके साझा करा में भी नजर आता है, और फिल्म में जो होना चाहिए जान वो यहाँ पे डाली जाती है। सर हमने ये तो देख लिया कि स्टूडेंट्स आपने तैयार कर दिए, उनको सिखा दिया उनको, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी देना यूनिवर्सिटी का हक फर्ज होता है, उन पर जरूरत होती है, साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह, वो उसको उस सिलसिले को किस तरह तलबा तलबात को तक पहुँचाया जाता है अपॉर्चुनिटीज वगैरह यूसीपी की तरफ से।
2: लेकिन यूसीपी इस मामले में भी सबसे आगे है, और हमारा डिपार्टमेंट भी मैं कहूँगा बहुत आगे
1: फिल्म की दुनिया में।
2: जी जी, फिल्म की दुनिया में और मीडिया की दुनिया में, मैं दोनों बात करूंगा आपसे, बट फिल्म में भी मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव की वैसी बात कर रहा हूँ कि हम बहुत आगे हैं, हमारा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी इस टाइम पे भी आप नीचे ए लॉबी में जाएं तो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है।
1: yes.
2: ठीक है, शायद आपको मालूम ही होगा ये 2 हफ्ते पहले यूसीपी में प्रॉपर करियर कनेक्ट हुआ है।
1: जी जी,
2: उस करियर कनेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट जिसकी डिमांड थी वो मीडिया, मतलब फिल्म मीडिया या कंप्यूटर, ये 2 लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा थी। मतलब सबसे ज्यादा जो स्टॉल या बूथ कह लें जिनको, वो जो लगे थे वो हमारे मीडिया के लगे थे। तो ये यूनिवर्सिटी ने आपको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी कि आप ना चल के जाओ, पूरी पूरी कंपनी आगे बाद चल के आ रही है कि आओ और हमें ज्वाइन करो। मैं आपको छोटा सा हमारी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना आप एनालिसिस करें मार्केट का, 80-85% चैनल्स में आपको यूसीपी का एलुमनाई या यूसीपी का बच्चा मिलेगा किसी ना किसी प्रोडक्शन में या इवन कैमरे के आगे भी। मैं आपको सिर्फ अपने बैच की बात बता सकता हूँ, मेरे बैच में इस टाइम पे कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनके मुझे नाम पता है, जिस वक्त मशहूर बड़े बड़े चैनल्स में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी।
1: सही सही,
2: ठीक है। तो ये तो मैं आपको अपने बैच की बात बता रहा हूँ, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव इतनी ऑफन नहीं हुआ करती थी। अब तो मैं देखता हूँ कि यूसीपी के पेज पे हर वक्त रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है, हर वक्त लगी होती है, और उसी वजह से हमारा जो बच्चा है वो हर जगह हर इंडस्ट्री में मौजूद है, वो फिल्म की हो, वो जर्नलिज्म की हो या वो पीआर एडवर्टाइजिंग की हो। जहां तक आपने फिल्म की बात की मेरे से, हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म की, वो जाहिर है एक हमें चीज समझने की जरूरत है, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है।
1: ऐसा ही है बिल्कुल।
2: अभी हम फिल्म इंडस्ट्री तो बोल देते हैं, बट अभी वो इंडस्ट्री बनी नहीं है, अभी वो बच्चा है, इट्स अ बेबी। और दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप इस फील्ड में आके अपना नाम बना सकते हैं, बिकॉज एक फील्ड जब नहीं आती है ना तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं।
1: ऐसा ही है।
2: और जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं तो आपके पास मार्जिन बहुत होता है कि आप अपनी जगह बना सकें।
1: yes.
2: तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप बड़े सही टाइम पे फिल्म पढ़ें, आप पढ़ें सीखें और मार्केट में जाके अपना नाम बनाएं, बिकॉज एक बार जब इंडस्ट्री बन गई इंशाल्लाह और आपकी रेगुलर फिल्म आना शुरू हो गई, जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं या हम हॉलीवुड में देखते हैं जहाँ पे एक एक महीने में 10 से ऊपर फिल्में आ रही हैं, फिर जरा अपनी जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको तब आपको कोई नई चीज लानी पड़ती है मार्केट में ना।
1: चेंज,
2: अभी आप कुछ भी ले आएंगे ना तो वो फिल्म चल जाएगी।
1: ऐसे ही है,
2: क्योंकि अभी लोग देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आएं और अपना नाम बनाएं।
1: सही हो गया बिल्कुल, करियर कनेक्ट की आपने और आपने बड़ी फ्रेश जो एग्जांपल्स है वो आपने हमें दी। सर बाकी फील्ड में भी आपने तो माशाल्लाह बहुत काम किया है, तो फील्ड्स के अंदर भी तो आपको यूसीपी के बच्चे नजर आते होंगे, उनको बाकी बच्चों से डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट लगते हैं, कुछ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है या एज इट इज इस तरह बाकी बच्चे?
2: बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, वो उनके पास प्रैक्टिकल के साथ थ्रेटिकल नॉलेज होता है। ठीक है, जब वहां पे बात हो रही होती है ना कैमरे की, तब भी यूसीपी का बच्चा खड़ा होता है, जी मुझे पता है जी कैमरे का या लाइटिंग का या किसी भी टेक्निकल चीज का आप नाम ले लें। और जब वहां पे कोई थ्रेटिकल बात हो रही होती है, जैसे आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि एक फिल्म बनाना के लिए सिर्फ कैमरा लाइट्स या वो चीजें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड होता है, आप करेक्टर को बनाते हैं, स्टोरी को आप डेवलप करते हैं,
1: ऐसे ही।
2: ये जो टीम होती है जब ये करती है, तो ये जो फिल्म का प्रोजेक्ट होता है ये उसके लिए बच्चे की तरह होता है, वो अपना बच्चे की जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, आप वैसे ही ख्याल रखते हैं उसका। तो वही वाली बात है कि यूसीबी का बच्चा या हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा जब मार्केट में खड़ा होता है तो आपको नजर आता है ये यूसीबी का बच्चा है, क्योंकि इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्रेटिकल नॉलेज भी उतना ही होता है जितना मेरा ख्याल है किसी और यूनिवर्सिटी, नामवर यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। अगर आप सिर्फ एलुमनाई हमारा जो मीटिंग होती है, एफएमसी की एलुमनाई मीटिंग होती है, आप उसके अंदर आके कभी बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि यूसीबी का बच्चा क्या क्या कर रहा है। मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिल्म के हवाले से क्या क्या कर रहा है, डबिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, باہر کے بڑے بڑے سیزنز پاکستان میں آتے ہیں اور اس کی ڈبنگ یو سی پی کے بچے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسی وہ بات نہیں جو میں اپنے سے بول رہا ہوں, یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. اگر آپ الومنائی میٹنگ میں ہیں, آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ملیں گے ایسے. ہمارے یو سی پی کے بچے ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, شارٹ کانٹینٹ جس میں آپ ریلس کانٹینٹ ہے یا وہ ہیں, آپ کو یو سی پی کے بچے ملیں گے. ٹاپ ناچ انفلوئنسرز اینڈ کانٹینٹ کریٹرز آپ کو یو سی پی کے ملیں گے, اور یہ اسی لیے ملیں گے کیونکہ یو سی پی نے آپ کو یہ فریڈم اور یہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں.
1: بالکل, تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا ہونا اور پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری کا ہونا بہت ضروری ہے. جی سامعین, یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और ब्रेक से पहले हम आज मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन फैकल्टी आर में बात कर रहे थे जी, फिल्म के हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फिल्म को किस तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह फिल्म को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो आज की इस फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जी सैयद अली मज़ाहिर साहब, जो कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में फिल्म के लेक्चरार हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म के हवाले से, और एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी मुझे पता लगी, आपने उसके बारे में मुझे बताना भी है कि फिल्म फेस्टिवल जो पहला हुआ था आप उसकी कोर टीम में मौजूद थे। और सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि फिल्म फेस्टिवल यूसीपी का क्या है और आप उसकी फर्स्ट कोर टीम में मौजूद है, तो जाहिर बात है आपको उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके बारे में बताइएगा
2: जी। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्योंकि जब पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था तब उस जमाने में मैं स्टूडेंट था यहाँ पे बीएस का, और मैं छठे सेमेस्टर में था, और मुझे ये मौका दिया गया डिपार्टमेंट की जानिब से ही कि मैं यूसीपी का पहला फिल्म फेस्टिवल करवाऊँ और मैं अपनी टीम बनाऊँ। और उसका मकसद यही था यूसीपी में फिल्म फेस्टिवल करवाने का, कि हम फिल्म को आम करें यूसीपी में, क्योंकि उस टाइम तक हमारा डिपार्टमेंट जो है फिल्म टीवी डिजिटल मीडिया वो नहीं आया था, वो नहीं लॉन्च हुआ था। तो एक तो उस तरह उसकी बुनियाद रखी जा रही थी फिल्म फेस्टिवल के जरिए कि यहाँ पे फिल्म का ट्रेंड है,
1: आगाज किया जाए
2: तो उसका ट्रेंड मौजूद है यहाँ पे। तो मेरे पास बिल्कुल ये एजाज हासिल है, मैं कहूँगा कि पहले फिल्म फेस्टिवल से मैं यूसीपी के फिल्म फेस्टिवल के साथ हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत।
2: तब मैं स्टूडेंट के साथ तरह साथ था, अब मैं एज ए फैकल्टी मेंबर उसको टीम का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उस फिल्म फेस्टिवल, इस फिल्म फेस्टिवल की, उस फिल्म फेस्टिवल तो हो गया, अब जो इस फिल्म फेस्टिवल जो चल रहे हैं, इसकी जो खास बात है वो ये है कि लाहौर की बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटियां, जो आप नाम लेना चाहें, आप सोच लें आपके जहन में जो यूनिवर्सिटीज पर आ रही है, इन सब ने फिल्म फेस्टिवल करवाए हैं।
1: सही।
2: लेकिन कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो अपना फिल्म फेस्टिवल सस्टेन कर सके या कर सकी, मैं कहूँगा
1: अभी तक नहीं,
2: नहीं कर सके। एक करवाया, दो करवाया, बहुत हो गया, तीन करवाया और फिर बंद हो गया। यूसीपी वाहिद यूनिवर्सिटी है, या आई वुड से यूसीपी के साथ एफएमसी वाहिद डिपार्टमेंट है जो अपना फिल्म फेस्टिवल 5 साल से लगातार करवा रहा है, और हर साल इसका जो लेवल है मैं कहूंगा वो अप से
1: अप हो जाता है,
2: अप से अप, मतलब ऊपर से ऊपर जा रहा है,
1: की जुबान में ऑरा अप हो जाता है,
2: ऑरा अप होता जा रहा है। लेकिन इसमें नो डाउट हमारी जो टीम है, कोर टीम है, स्पेशली नाम लेके आपको कह सकता हूँ कि सर कामरान इस कोर टीम के फर्स्ट, जब मैं एज अ स्टूडेंट था तब ही वाज द वन हु चूज मी कि तुम स्टूडेंट्स में रिप्रेजेंट करोगे, वो इस फेस्टिवल की बैकबोन है, जान है, ठीक है। उसके अलावा हमारे डेफिनेटली जो हमारे डीन है, उस टाइम पे वो एचओडी हुआ करते थे, अब वो डीन है हमारे, तो उनकी इस फेस्टिवल में बहुत ज़ाहिर है एक नज़र आती है, उनकी काविश है, ठीक है। और इसी वजह से ये आज तक फिल्म फेस्टिवल मौजूद है, हर साल हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल भी होगा।
1: ये होता क्या है, फिल्म फेस्टिवल किस तरह अरेंज किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है?
2: जी, फिल्म फेस्टिवल में इस तरह होता है कि जी फिल्म फेस्टिवल में हम पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से नहीं, हम पूरी दुनिया से फिल्म्स मंगवाते हैं।
1: सही।
2: और इसके अंदर कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स कैटेगरी की फिल्म्स आती है हमारे पास, और खाली फिल्म्स नहीं होती हमारे पास, में दो और कैटेगरीज हैं हमारे पास, फिल्म की कैटेगरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी है, और हमारे पास म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी है। और इन तीनों कैटेगरीज में हमारे पास आती है, पहले हमारी एक इंटरनल कमेटी है जो हमारी कोर टीम ही है बेसिकली, वो शॉर्ट डाउन करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है कि कौन सी फिल्म जो है वो मेजर ज्यूरी के पास जाएंगी। फिर एक ज्यूरी डिसाइड हुई होती है, फिल्म की अपनी ज्यूरी है, हमारे पास बड़े बड़े नाम यहाँ पे जज कर सके, सैयद नूर साहब भी यहाँ पे जज रहे हैं हमारे फिल्म फेस्टिवल के, म्यूजिक में जवाद अहमद साहब रहे हैं हमारे साथ, आजकल हमारे साथ हफीज ताहिर साहब मौजूद हैं ज्यूरी में,
1: बड़े नाम
2: मौजूद हैं, हमजा यूसुफ साहब जो इस टाइम पे मेरे ख्याल से सारे बड़ी बड़ी म्यूजिक वीडियोज पाकिस्तान की, इवन ISPR की जितनी है वो हमजा यूसुफ साहब के पास है, ठीक है, हमारे उसमें वो रहे हैं, ज्यूरी में रहे हैं। अब इस साल की क्या ज्यूरी होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, जाहिर है
1: कुछ सरप्राइज है,
2: कुछ सरप्राइज भी है जाहिर है, लेकिन जो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर शॉर्ट सिलेक्शन के बाद इनके पास जाती है, एंड फिर उसमें से ये top 3 चूज करके हमें दे देते हैं, और उनको फिर कैश इनाम तक दिया जाता है। बहुत कम फेस्टिवल्स हैं जिसमें इनाम कैश की सूरत में स्टूडेंट को दिया जाए।
1: सही, सही।
2: आप ट्रॉफी दे देते हैं, आप शील्ड दे देते हैं, आप यहाँ पे एक शील्ड के साथ कैश इनाम भी दिया जाए, ताकि एक फिल्म, अपकमिंग फिल्म मेकर की हौसला अफजाई भी हो, क्योंकि फिल्म मेकिंग सुनने में बड़ा लगता है कि फिल्म मेकिंग फिल्म बना दी, फिल्म में आपका बजट लगता है, आपका पैसा लगता है, तो आप हौसला अफजाई के साथ आपको ये भी आप कह देते हैं कि यार तुमने इतनी मेहनत की है, ये जाहिर उतना पैसा नहीं, लेकिन ये हौसला अफजाई कि तुम और मेहनत करो। तो फिल्म फेस्टिवल में हमारी है, और लास्ट फिल्म फेस्टिवल में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास, क्योंकि पांचवा फिल्म फेस्टिवल था तो हमने ये रखा था 5 इंटरनेशनल फिल्म्स।
1: ओके,
2: हमारे पास लास्ट फिल्म फेस्टिवल में 5 बाहर से फिल्में आई थी, जिसमें मैं आपको नाम, हमारे पास रशियन फिल्म आई थी, हमारे पास ईरानी फिल्म आई थी, हमारे पास ब्रिटेन यूके की फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, जबकि उसको हालात बड़े नासाज थे, लेकिन फिर भी हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी, इंडिया से, मतलब इंडियन फिल्म से मुराद है इंडिया से फिल्म आई थी हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास फिल्म आई थी चेक रिपब्लिक से।
1: ओके,
2: ठीक है, और अभी भी हमारे पास एक फिल्म जो कुछ आ रही थी वो जाहिर है थोड़ी डिले हो गई, कोरियन फिल्म्स।
1: अच्छा अच्छा,
2: और वो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि आने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में हम अपनी इंटरनेशनल फिल्म्स की तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा फिल्म फेस्टिवल इतना फेमस हो चुका है कि लोगों को अब दिसंबर का इंतजार होता है कि दिसंबर आने वाला है, अब कब डेट अनाउंस होंगी और यूसीपी का फिल्म फेस्टिवल किन डेट्स पे होगा ताकि हम अपनी फिल्म सबमिट करें। तो ये यूसीपी के फिल्म फेस्टिवल की बड़ी खासियत है कि हर साल करवाते हैं और हर साल बड़े से बड़ा करवाते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी आप देखेंगे कि पहले से बहुत बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, अगर उस हालात में हमें वहां से आ सकती है तो इन हालात में तो हमें बहुत कुछ आ सकता है, और बिल्कुल छठा आई थिंक ये इवेंट है।
2: बिल्कुल इंशाल्लाह इस साल छठा होगा ये, और मैं जैसे पहले भी बोला है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 6 साल, मतलब छठा साल ही अब जो होगा, लगातार फिल्म फेस्टिवल करवाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और ये ऐसा नहीं है कि ये प्लान होता है, ये पूरा साल की तैयारियां चलती हैं।
1: मैं बिल्कुल यही सवाल करने लगा था कि ये ऐसे तो नहीं हो जाता कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जाहरी बात है कुछ तैयारियां शैयरियां भी होती हैं, वो तो जाहरी बात है मीडिया की जो हमारी टीम है, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के, जिनमें हमारे टीचर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं,
2: डेफिनेटली स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ये फेस्टिवल टीचर्स तो है ही है, देखिए बट ये फेस्टिवल पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट्स ना हो, क्योंकि ये फेस्टिवल करने का रीजन भी स्टूडेंट्स ही है। देखिए स्टूडेंट्स को एक फिल्म फेस्टिवल से क्या होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ। जब आपके पास दुनिया जहां से, या दुनिया जहां को चलने छोड़ दें, हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, आपके पास पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फिल्म आती है, तो खाली फिल्म नहीं आती है, आप उन फिल्म मेकर्स को 2 दिन इन्वाइट करते हैं, वो सारे फिल्म मेकर्स यूसीपी में आते हैं। जब वो 2 दिन के लिए फिल्म मेकर्स यूसीपी में आते हैं, तो फिल्म मेकर्स आपस में मिलते हैं, आपस में आइडिया शेयर करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, किसी का कैमरा वर्क अच्छा है, किसी का लाइटिंग वर्क अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई गाना अच्छा बनाता है, कोई गाता अच्छा है, तो आपस में कनेक्ट करके एक टीम बन जाती है, और आपको एक फिल्म का माहौल मिलता है। तो एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल का खाली मकसद ये नहीं है कि आपने लोगों का काम दिखाना है, असल में आपने लोगों को मिलाना है।
1: बिल्कुल,
2: और जब वो मिलेंगे तो एक डेफिनेटली नई चीज प्रोड्यूस होगी और वो पहले से बेहतर होगी, बिकॉज एक टैलेंटेड लोग मिलके काम करेंगे।
1: बिल्कुल, अगर एक बंदा करेगा तो उसमें मे बी के 2 टैलेंट्स हो, लेकिन जब 8-10 टैलेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो काम जो है उसकी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जिस तरह बात की कि वो मुतरिफ होता है। तो सामईन इकराम, आपने यहाँ पे सुना, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और सामईन इकराम आपने यहाँ पे सुना कि किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट खास तौर पे फिल्म को लेके चल रहा है, किस तरह तलबा तलबात के अंदर फिल्म का रुझान बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म वो पिलर हो चुका है इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का, जिसमें बहुत ज्यादा अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, और बहुत बड़ी एक फील्ड बन चुकी है। तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रोग्राम से सीखा होगा और देखा होगा किस तरह के एक स्टूडेंट्स को एक स्टार्ट से लेकर फील्ड वर्क तक बना के पेश किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने तो इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है, और प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा को दीजिएगा इजाज़त, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

चुप रहूं।

सीकी के सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 न्यू सिटी की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी आर प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम मीडिया एंड फैकल्टी के बारे में जानते हैं, हम डिस्कशन करते हैं एकेडेमिया की, फैकल्टी की, अपॉर्चुनिटीज की, नेटवर्किंग स्किल्स की, मीडिया ट्रेंड्स की, फिल्म मेकिंग की, एड पीआर की, एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के बहुत सारे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू रहती है हमारी। और आज जो हमारी मेहमान है उनको किसी भी तारुफ का ऐसे तो मोहताज नहीं, और उसके अलावा वो एक हरदिल अजीज शख्सियत है जिनका नाम लेते मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट है या टीचर है जो भी उनसे बात करता है और जिनका जब भी नाम आता है तो वो नाम में उनकी रिस्पेक्ट लिए बगैर नाम भी नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, किसी से डिस्कशन करनी है या किसी से आपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेनी है, तो डॉक्टर सदफ ज़हरा हैं जिनके पास हम सबसे पहले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: वेलकम टू फैकल्टी आर।
3: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
2: अच्छा, आज गुफ्तगू का सिलसिला जो आगाज़ करेंगे वो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने मीडिया और मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री ली और इसमें ही PhD की।
3: Yes.
2: तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मुझे मीडिया में कुछ करना है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं बच्चे साइंसेस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहाँ कैसे एक ख्याल आया कि नहीं मुझे मीडिया फील्ड में जाना है?
3: वेल एक्चुअली आई एंटर्ड दिस फील्ड वेरी कोइंसिडेंटली। बाकी लोगों की तरह मेरे पेरेंट्स का भी ये ड्रीम था, लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम था, और मेरी लाइफ का भी ये एम था कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूंगी। एंड आई ऑप्टेड फॉर प्री मेडिकल बोथ इन माय मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से दोज पर्सन हु नो मी पर्सनली दे नो माई मदर डाइड इन वेरी अर्ली एज, दैट्स वाई आई हैड टू स्विच टू दिस फील्ड। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उस वक्त एडमिशन्स ओपन थे एंड मैथ्स कम्युनिकेशन जो है वो, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मैगजीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, एंड मैं मीडिया रेगुलरली जो है वो न्यूज़ भी सुनती थी, एंड वहाँ पे जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ओपन था तो मैंने वहाँ पे चूज़ कर लिया। देन आई नो के आई कैन एडजस्ट इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट और सिचुएशन, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई डिवेल्प माई इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, और डेफिनेटली अभी आपके सामने हूँ मैं।
2: तो जब आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था तो क्या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर या कोई ऐसी बात सुनने को मिली थी कि तुमने मीडिया फील्ड में चली गई हो, ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, इस फील्ड में क्या करोगी आगे जाके?
3: एक्चुअली इस तरह का तो प्रेशर नहीं था, दो आई बिलोंग टू ब्लोच फैमिली एंड दे आर वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ फैमिलीज, लेकिन माई होल फैमिली इज़ माशाल्लाह वेरी प्रोग्रेसिव एंड माई फादर वॉज वेरी मच प्रोग्रेसिव। I had pressure के I was gold medalist throughout my career, educational career. तो मेरे पापा जी को ये लगता था कि मुझे किसी accounting and finance या इस तरह की जो intellectual fields हैं उनमें जाना चाहिए, it can be computer science और मैं वहाँ पर excel कर सकती हूँ, और mass communication में मैं अपना जो talent है वो मैं waste कर रही हूँ। लेकिन then मैंने अपने पापा जी को कहा कि नहीं, जो मैंने चूज़ कर लिया है अब मुझे इसमें इंटरेस्ट डिवेल्प हो गया एंड अब मैं इसको स्विच नहीं करूँगी, एंड देन आई कंटिन्यूड माई स्टडीज इन दिस।
2: यानी वो इजीली मान गए थे?
3: यस यस।
2: तो आज वो बहुत प्राउड होंगे आप पे, बिकॉज जिस तरह से आपने अपने करियर को स्टार्ट किया और अभी जिस तरह से करियर पे लेके चल रही हैं आप अपने रिसर्च को एंड अदर अचीवमेंट्स को, वो काबिले तहसीन और काबिले क्या कहते हैं तारीफ है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि एरिया ऑफ रिसर्च या रिसर्च की बात करें, क्योंकि यूजुअली जब हम रिसर्च की बात करते हैं क्लास में भी, तो स्टूडेंट्स बड़ा एकदम से घबरा जाते हैं, बड़ा ये रुखी सी फील्ड लगती है, और हर इंसान रिसर्च कर भी नहीं सकता.
3: बिल्कुल ऐसे ही है.
2: तो आपको कैसे रिसर्च में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने सोचा कि अब यही मेरी जो है फील्ड है और मैंने इसी में हर तरह से अपने झंडे मनवाने हैं और मैंने लगाने हैं हर तरह?
3: आई वुड से कि आई गॉट लकी. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में इजीली जो है वो एडजस्ट हो जाती हूँ. तो व्हेन आई डिड माय बीएस इन मैस कम्युनिकेशन, आई डिडंट नो कि मैं आगे एमफिल करूँगी या पीएचडी करूँगी. जैसे ही मेरी बीएस की डिग्री कंप्लीट हुई, तो उस दिन जो है, जिस दिन मुझे डिग्री मिली उस दिन जो है वो लास्ट डेट थी बीजीयू में एमफिल के एडमिशन की. तो माय फादर उस वक्त जो है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जाओ और आप जाके एडमिशन टेस्ट अपना जो है वो फॉर्म वगैरह फिल करो और फिर देखते हैं. क्योंकि मुझे शुरू से ही, जैसे मैंने बताया कि मुझे लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं मेडिकल की या कोई भी जो इस तरह की स्टोरीज होती थी मैं उनकी क्लिपिंग्स जो है वो कट करके अपने पास फाइल्स मेंटेन करती होती थी, अपनी डायरीज मेंटेन करती थी. तो मुझे नई नई चीज़ें लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक था. तो जब मैंने एमफिल में रिसर्च पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि रिसर्च बेसिकली ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप हर रोज़ कोई नई से नई चीज़ लर्न कर रहे होते हो. और बेसिकली उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि आप अपने बिल्कुल आसपास की चीज़ें जो है वो उन पे क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है. लेट फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस स्टार्ट कर दूँ कि ये जो कन्वर्जेशन हो रही है इसमें उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं या डेली बेसिस पे जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ रिसर्च. ठीक है. और यस आई नो कि इट इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट और इनिशियली आपको लगता भी है क्योंकि परसेप्शन डिवेलप हो चुकी हुई है ओवरऑल कि रिसर्च करना बहुत मुश्किल है. लेकिन जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा बस यही प्रोसेस है एंड इट वाज वेरी इजी. तो फिर आपको जो है वो लगता है कि नहीं, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए. एंड इससे जो है वो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम. और आप जो है वो उस प्रोसेस से गुजर रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये आपका प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो आप खुद कहेंगे कि दिस वॉज वेरी इजी.
2: मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस है. इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिसर्च करते हुए आपको कैसे आप मेक श्योर करते हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करने जाने वाला हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अप टू द मार्क है और मैं इसको कर सकता हूँ. क्योंकि रिसर्च इतना रूखा, इतना ड्राई है. स्टूडेंट्स भी क्लास में जब हम बात कर रहे होते हैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ने की, बच्चे कभी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे होते.
3: बिल्कुल. अच्छा, उसके जो है वो हर हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो पैटर्न्स पे वर्क करता है. तो व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स के आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है या आपने थीसिस कैसे लिखना है या आपने पब्लिकेशंस कैसे करवानी है, तो मैं उनको वो टिप्स देती हूँ जो उनके काम आए. यानी यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें आप उसको रीड करें और रीड करें, बार बार रीड करें. आप हम ह्यूमन माइंड वर्क भी इस तरह से करता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड करें किसी चीज़ को तो जस्ट बिकम फैमिलियर विद द टेक्स्ट. जब आप सेकंड टाइम उसको रीड करेंगे तो आपकी खुद ब खुद सबकॉन्शियस में उसकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी. प्लस जो आप बात कर रही हैं कि जैसे रिसर्च प्रोसेस है, अभी उसमें भी फ़र्क है ना. अगर आप पब्लिकेशंस की तरफ जाएंगी और अगर आप अपने इंटरेस्ट की वजह से रिसर्च पे काम करना शुरू करेंगी तो मे बी वहाँ पे इतनी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ना हो. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एमफिल एंड देन पीएचडी खास तौर पे, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट अप्रूवल्स लेने होते हैं. वी हैव टू वेट कि अब हमें इस चीज़ का अप्रूवल मिलेगा तो हम ये करेंगे. देन इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस जिसकी वजह से आप जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं. बट एक्चुअली रिसर्च आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही है, जो अदर सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं, वो आपकी डीमोटिवेशन का जो है वो कॉज बन रहे होते हैं. तो इसलिए आपको लगता है कि
2: आपसे बात करके पता चल रहा है कि रिसर्च आपके दिल के कितने करीब है. चले हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या है और आपने कैसे सिलेक्ट किया कि मैं इसी एरिया में काम करने वाली हूँ और इसी में एक्सेल करना है.
3: वेल इनिशियली जब मैंने अपना एमफिल का थीसिस किया था तो आई वॉज इन टू इस्लामोफोबिया. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. और मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो भी वुमेन मुस्लिम को जो है वो किस तरह से अमेरिकन प्रिंट मीडिया में या वर्ल्ड मीडिया जो है वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इसके ऊपर मैंने काम किया. देन जब मैं पीएचडी में आई, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है वो ट्रेंड्स आपके जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है एंड ऑलरेडी इसके ऊपर इन एरियाज पे इतना ज़्यादा काम हो चुका हुआ था. देन आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग के बाद, कोई ऑलमोस्ट 8 to 10 एरियाज पढ़ने उनको लिखने के बाद रिजेक्ट हो के देन आई केम इनटू मीडिया एंड साइकोलॉजी. तो बेसिकली अभी आजकल जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजी को लेकर या वेलबींग को लेकर जो है वो मैं अपनी पब्लिकेशंस या स्टूडेंट्स के जो थीसिस हैं वो इस पे काम कर रहे हैं.
2: सो आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है सामईन. हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि मिस्टर जफ़ का रिसर्च एरिया और उसमें इंटरेस्ट और एक अच्छा रिसर्चर कैसे बने.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर सदफ जार हैं, और उनसे भी हम डिस्कस कर रहे थे उनका एरिया ऑफ रिसर्च। और आप बता रही थी कि मीडिया और साइकोलॉजी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। तो मीडिया और साइकोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं। हम जो कॉन्टेंट देख रहे हैं, जो आज रील्स हम देखते हैं, जो भी ट्रेंड है, जो पोस्ट है, हर चीज के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जितना रिलेट करते हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है? इसको करते हुए आपको ये फील नहीं होता कि अब मैं इस पर्सपेक्टिव और अप्रोच से लिख रही हूँ, अब इस पर्सपेक्टिव और अप्रोच को भी सोचना है, इस ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए, मैं इतनी सारी चीजों को कैसे समराइज करूंगी? कभी ये ख्याल आता है या जस्ट क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है आप बस रेंडमली जो ख्याल है उसको लिख देती है?
2: एक्चुअली इस तरह से है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो विद इन अ डे जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया तक कन्फाइन कर लेंगे तो आपकी जो लर्निंग है और आपका जो एक्सपर्टीज़ है आपकी वो एक ही एरिया तक फिर लिमिटेड हो जाएंगी, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मीडिया एंड साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म एंड उसके अंदर जो है वो बहुत सारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। जैसे आपने खुद बात की कि हम उसमें रील्स देख सकते हैं, हम उसमें अगर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की ही बात करें तो उसमें पॉजिटिव भी आते हैं, उसमें नेगेटिव भी आते हैं, उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है। फिर अगर हम उसको रिलेट करना शुरू करें फिजिकल हेल्थ के साथ तो जैसे इंसोमनिया है, स्लीपलेसनेस है, आपकी आइसोलेशन है, ये सारी चीज़ें
1: है, डिप्रेशन है,
2: यस वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो एक ही ब्रॉडर जो एरिया है मीडिया एंड साइकोलॉजी उसके अंदर फॉल कर रहा है। और अगर देखा जाए तो जो हमारी सोशल साइंसेज या मैथ्स कॉम की रिसर्च है वो बिहेवियरल रिसर्च है। तो आप अगर मीडिया एंड साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हर एक न्यू रिसर्च में डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, आपको नई चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने का मौका मिल रहा है। तो रैंडमली नहीं होते लेकिन डेफिनेटली उनके पीछे रैंडम थॉट्स भी होती हैं। जो चीज़ पॉपुलर है, जैसे लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स इज़ पॉपुलर, कोरियन कंटेंट इज़ पॉपुलर, उस पर मैंने काम किया है, देन उसी तरह से जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी और स्ट्रेस की आपने बात की। सोशल मीडिया का एक मेजर रोल है जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यंगस्टर्स को, हर तरह के एजेस के लोगों में जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी स्ट्रेस आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है,
1: स्पेसिफिकली डिजिटल नेटिव्स
2: बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली नॉट सोशल मीडिया, अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, हम सारा दिन मोबाइल्स पे लैपटॉप्स पे काम करते हैं, हम कनेक्टेड हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं लेकिन हम फिजिकली डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो क्योंकि हम एक नॉर्मल पैटर्न से हट गए हैं तो उसका डेफिनेटली हमारे बिहेवियर्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो वो लर्न करना जो है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि यस मैं अभी ये भी पढ़ना है, अभी मैंने ये भी देखना है, अभी मैंने ये भी देखना
1: है। और मैम जितनी ये वास्ट फील्ड है, जैसे सोशियोलॉजी से भी ये लिंक करती है कि क्या सोसाइटी और सिस्टम क्या है, आप कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करते हो, तो मुझे लगता है कि आपने ऑल इन ऑल जो है ना हर चीज में एक्सपर्टीज ले ली है। एज अ रिसर्च एक्सपर्ट जब आपको बुलाया जाता है, आपके आपसे डिस्कशन की जाती है, तो तब ये फील होता है कि जो मैंने जितनी स्ट्रगल आज तक की है सम हाउ कहीं ना कहीं मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ?
2: मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 100% जस्टिफाई करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं या जो लोगों को लगता है कि मैं हूँ, मैं उसको एक मैक्सिमम लिमिट तक अचीव करने की कोशिश करूँ और मैं अपना 100% जो है वो देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो है मैं अपने आप को भी लेट डाउन ना करूँ और जिन लोगों को मुझसे जो है वो एक्सपेक्टेशन है मैं उनको भी लेट डाउन ना करूँ।
1: और मैम इसी के साथ अगर मैं ये पूछूँगी एक अच्छा रिसर्चर आपके ख्याल से कौन है, बिकॉज आप हाउस वाइफ भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देख रही होती हैं, उसके साथ साथ रिसर्च वर्क पर भी एक्सपर्टीज़ हैं, तो एक अच्छा रिसर्चर कैसे एक अच्छा रिसर्चर बनता है?
2: एक अच्छा रिसर्चर जो है वो बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अगर आप अपने आप को स्टॉप कर देंगे और आप कहेंगे कि देयर इज नो अदर थिंग जिसको मैं लर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई जो मैं सीखना नहीं चाहता या मैं नहीं सीख सकता क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा नहीं होता. एक अच्छा रिसर्चर वो है जो कि कंसिस्टेंसी इज द की इन एवरी फील्ड. आप चाहे रिसर्चर नहीं भी हैं, इवन इफ़ यू आर अ टीचर, आप जो है अगर हाउस वाइफ भी हैं, तो हम कंटिन्यूस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं. जहाँ आप अपने आप को स्टॉप लगा देंगे वहीं पर ही वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा. तो बींग अ रिसर्चर मैं ये कहूँगी कि येस वी हैव और ओन चैलेंजेस, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. हमारे जो है वो बिल्कुल ऐसे फुल स्टॉप्स आ जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इट इज़ अ डेड एंड और इसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करें और नए सिरे से स्टार्ट करें एंड इसको कंटिन्यूसली ले कर चलें, अपने आप को इवॉल्व करें. विद एवरी रिसर्च आपको लगेगा कि आप खुद इवॉल्व हो रहे हैं.
1: और मैम ये पढ़ाना कितना डिफिकल्ट होता है रिसर्च सब्जेक्ट, पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, एमफिल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना?
2: वेल आफ्टर माई एक्सपीरियंस विद बोथ बी एस, बल्कि बोथ तो नहीं मैं कहूँगी, बी एस में भी, एम फिल में भी एंड पी एच डी में भी, तो मुझे जो है वो स्कूल का टाइम याद आ जाता है जहाँ पे जो है वो टीचर्स आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के लिखना सिखाते हैं. तो मैं रिकमेंड करूँगी टीचर्स को कि जो रिसर्च पढ़ाते हैं वो बच्चों को ऐसे ही समझे कि वो स्कूल के बच्चों को कोई इस तरह की चीज़ सिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ी है. और वैसे भी एक टीचर को जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को साइड पे रख के बच्चों के लेवल तक आके जब आप पढ़ाते हैं उनके टर्म्स में, उनकी लैंग्वेज में, उनके लेवल के एग्जांपल्स देके, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करते हैं.
1: कौन सी क्लास को पढ़ाना रिसर्च बहुत डिफिकल्ट रहता है, बीएस, एमफिल या पीएचडी?
2: पीएचडी.
1: पीएचडी
2: को? यस.
1: क्यों?
2: बी एस लेवल के जो बच्चे होते हैं वो उसको सीरियसली ही नहीं ले रहे होते हैं. उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग बस यही होती है कि हमने ये कोर्स पढ़ना है और हमने इसको पास करना है क्योंकि हमने अपनी डिग्री पूरी करनी है, लेकिन एटलीस्ट वो लर्न करते हैं चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए करते हैं. एमफिल के लोग क्योंकि नए नए आए होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अब तो रिसर्च हमारे सर पर पढ़ ही गई है तो ये मुश्किल है,
1: तो
2: लेकिन यस, लेकिन एटलीस्ट वो करते हैं. जब आप पी एच डी में जाते हैं तो मोस्टली उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं और वो अपनी फील्ड के सर्टेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो आपकी एक मेंटालिटी सेट हो चुकी होती है कि ये तो कोई चीज नहीं है और हम तो एक्सपर्ट्स हैं, हमें तो ये चीज आती है. तो उनको काउंटर करना, उनको सिखाना इज वेरी डिफिकल्ट.
1: अच्छा एक और चीज बताएं, एआई के टाइम पीरियड में जहां चैट जीपीटी ने और डीप सीक ने इतनी असिस्टेंस कर दी है, एज अ रिसर्च टीचर एंड एज अ रिसर्चर कैसे पता चलता है ये प्लेजराइज्ड काम है?
2: जब आप कुछ सालों से टीचर, डेफिनेटली आपको भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी साल हो गए हैं, तो यू नो कि आपका जो स्टूडेंट है वो उसका पैटर्न क्या है, आपका राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो किस तरह की, वो कैबलरी उसका लेवल क्या है या वो किस तरह के सेंटेंसेस लिखता है या लिखती है, उससे भी आपको पता चल जाता है. देन डेफिनेटली वी हैव सॉफ्टवेयर जहाँ से हम प्लेजरिज्म ईजिली चेक कर सकते हैं, एआई भी हम चेक करते हैं, हम टर्निटिंग यूज़ करते हैं, अब तो उसमें एआई रिपोर्ट भी डेवलप होती है, प्लेजरिज्म भी होती है, लेकिन देन उसमें भी हमारे पास ऐसे एआई असिस्टेंट्स हैं जो कि आपको रीफ्रेज भी कर देते हैं, पैराफ्रेज भी कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाता है कि इसमें जो एक खास तरह का पैटर्न है जो कि एआई का है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो.
1: ऐसे होता है कि आप जब रिसर्च आर्टिकल से गो थ्रू कर रही होती हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो एआई की बहुत हेल्प ले रहे हैं?
2: एआई की हेल्प लेना बुरा नहीं है, डेफिनेटली उसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ की कमी या हर चीज़ की ज्यादती जो है वो बुरी है, आप उसको यूज़ करें लेकिन उसमें अपना इंटेलेक्ट ज़रूर ऐड करें.
1: इसी के साथ लिसनर्स हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. आप सुन रहे हैं FM 92.6. मैं हूँ मरियम इरशाद, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर्क के साथ.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारी सबसे प्यारी और बहुत हर दिल अजीज डॉक्टर सदफ जहरा हमारे साथ, और हम इन सभी बात कर रहे थे प्लेजरिज्म पे। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि रिसर्च और रिसर्चर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सोशल साइंसेज में अभी क्या रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं?
2: पब्लिकेशंस, उसमें भी आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जर्नल पब्लिकेशंस कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप बुक चैप्टर्स जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं, देन बुक चैप्टर्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, प्लस यू कैन बी अ रिव्यूअर फॉर एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल, जो बेसिकली एक रिसर्चर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
1: अच्छा मैम, इसी से मुझे याद आया कि हमारा जो UCP जर्नल ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप उसकी एडिटर भी हैं।
2: Yes.
1: तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया और कैसे इस इनिशिएटिव में आपने फुल ऑन अपनी एफर्ट्स दी हैं? बिकॉज मैं देखती हूँ आप बहुत मेहनत कर रही होती हैं, इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना, गो थ्रू करना, रिव्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना, सब एडिटर को देखना, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, कैसे कर लेती हैं ये?
2: वेल मरियम, थैंक यू सो मच पहले तो इतनी अप्रिसिएशन के लिए, कि जब आपको अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है,
1: और आपको मोटिवेशन
2: भी मिलती है। थैंक यू सो मच, आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि आपने आगे जो है वो इससे अच्छा काम ही करना है। ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की जो है वो नीड ऑफ दी और है राइट नाउ, क्योंकि आप देखें कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, देर वॉज अ टाइम जब हमारे नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत दूर आपको लगते थे, यानी वो ऐसी चीज़ होती थी जिसमें आपको लगता था कि एक जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे टीचर्स जो होते थे वो भी नहीं पब्लिश उस तरह से करवा पाते थे। लेकिन अभी तो आप देखें, विद दी इन्वेंशंस जो हमारे पास इनोवेशंस आ चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास ऑनलाइन जर्नल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्रिंट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो कोई भी एक रिसर्चर जिसको लगता है कि उसने काम किया वो पब्लिश करवा सकता है और करवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट और फैकल्टी में इसकी ज़रूरत इसलिए है कि डेफिनेटली हमारे बहुत सारे एकेडेमिया से रेलिवेंट जो टीचर्स हैं उसमें हमारी प्रमोशन का क्राइटेरिया भी पब्लिकेशन की बेसिस पे होता है, ये तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी अपनी भी ज़रूरत है। अब वो जो पब्लिकेशन है वो एक प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आएँ और अपने आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश करवाएं। उससे डिपार्टमेंट भी ग्रो करेगा, जो आपका स्कॉलर है, टीचर है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। हमने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी इन जुलाई 2022, एंड देन हमारे बोर्ड्स बने, हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा फर्स्ट इशू जो है वो पब्लिश हुआ था इन जून 2023, जो कि हमारा फर्स्ट इशू था, और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्नल जो है वो वाई कैटेगरी में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया HEC ने, एंड इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट, के मतलब हमारी मेहनत जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसका इतना फल दिया। एंड अभी जो है वो हमारा जर्नल, उसका जो Volume 3 है उसके Issue 1 के लिए हमने कॉल फॉर पेपर्स भी दिया हुआ है, तो इफ़ एनी स्टूडेंट और फैकल्टी मेम्बर और रिसर्च स्कॉलर इज इंटरेस्टेड, नॉट स्पेसिफिकली इन लाहौर, बल्कि अच्छी बात है जितने भी मीडिया के जहाँ जहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली, वो जो है वो हमें अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली उसका पूरा प्रोसेस है।
1: अच्छा मैम, इसका कोई क्राइटेरिया होता है जब आपको आर्टिकल भेजा जाता है, और कोई फ़ी है, कोई क्राइटेरिया है जिसको आप देखती हैं और उसके मुताबिक जो है रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है?
2: भाई, हमारा जो जर्नल है वो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो है वो यूनिवर्सिटी बेसिस पे है, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, हम इसकी कोई पब्लिकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो है वो क्योंकि HEC से रिकॉग्नाइज्ड, और अगर आपका जर्नल HEC से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है तब भी उसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमें मीट करना होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय HEC। उसमें ये होता है कि एक स्कॉलर जो है वो आर्टिकल हमें सबमिट करवाता है, हमारा जर्नल का OGS है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसको जिसका लिंक है कि OGS .ucb.edu.pk वहाँ पे जो है वो सिंपली एक ऑथर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद अपना आर्टिकल और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, की वर्ड्स हैं, जो को ऑथर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ करके वो सबमिट करवाता है। फिर उसके बाद जो है वो एडिटोरियल बोर्ड जो है वो उसका इनिशियली रिव्यू करते हैं। इनिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि वो जो आर्टिकल सबमिट हुआ है वो हमारे स्कोप के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी जो हमने अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं उनको मीट कर रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग और जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है वो उसको मीट कर रहा है या नहीं, फॉल कर रहा है उसके अंदर। अगर तो वो उसके अंदर फॉल कर रहा है और हम अप्रूव करते हैं कि यस इसके अंदर जो है वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो फिर हम उसको फर्दर रिव्यू प्रोसेस में डालते हैं। अब HEC के अकॉर्डिंग जो है वो हम ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो मेक श्योर करते हैं, जिसमें ऑथर भी एनोनिमस होता है और रिव्यूअर्स भी एनोनिमस होते हैं, यानी बोथ साइड पे दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इफ़ देयर आर एनी मेजर रिविजन्स तो हम उसको वहीं पे ही रिविजन्स के लिए भेज देते हैं। देन जब उसमें रिविजन्स हो जाती हैं, अगर हमें रिव्यूअर ने कहा है तो हम उसको रिव्यू के लिए जो है वो भेजते हैं। लेकिन अगर माइनर रिविजन्स हैं तो वो भी हम ऑथर से करवा के फिर देखते हैं कि उसके अंदर वो रिविजन्स जो है वो मेक श्योर हुई हैं या नहीं, एंड देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया है एंड नाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल तो फिर हम इसको फर्दर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन उसकी कॉपी एडिटिंग एंड प्रोडक्शन उसमें जो है वो 1 से 2 माह लगते हैं, देन हम उसको एक्चुअली पब्लिश करते हैं बोथ ऑनलाइन एंड इन प्रिंट वर्जन।
1: और मैम ये जो पब्लिकेशन हो रही है ये फैकल्टी में से जो फैकल्टी पर्सन हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की, ये भी पब्लिकेशन करवा सकते हैं या इनके अलावा कोई भी पब्लिकेशन करवा सकता है?
2: जो एडिटोरियल बोर्ड है आपके जर्नल का, जैसे लेट सपोज उसमें हम 6 मेंबर्स हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो पब्लिश नहीं करवा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर के जो एडिटोरियल बोर्ड है वो अपनी पब्लिकेशन उसमें ना कराए, और क्योंकि अपना जर्नल है वो खुद ही देख रहे हैं और खुद ही सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू HEC आपकी जो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके अपने इंस्टीट्यूट या अपने डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। तो हम ये करते हैं कि इफ़ देयर आर 5 आर्टिकल्स तो 4 हमारे जो है वो आउट ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं और 1 आर्टिकल हमारे अपने स्कॉलर्स में से होता है। एंड देन उसी तरह अगर 10 आर्टिकल्स हैं तो 8 बाहर से होंगे और 2 जो है वो हमारे अपने होंगे।
1: और मैम हर मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव मिक्स मेथड मेथोडोलॉजी हर तरह का आर्टिकल इसमें होता है?
2: येस, बट उसका जो एनालिसिस पार्ट है बोथ फॉर क्वालिटेटिव एंड बोथ फॉर क्वान्टिटेटिव वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं।
1: अच्छा, यानी इसकी एक सर्टेन तरह से इम्प्लीमेंटेशन यही है कि आपका रिव्यू जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हो।
2: yes.
1: और उसमें प्लेजराइज्ड काम ना हो।
2: yes.
1: और डेटा जो है जो डेटा कलेक्शन हुई है या डेटा का एनालिसिस अब अप टू द मार्क हो।
2: yes,
1: ऐसे ही है जैसे बाकी जर्नल्स के लिए आप भेज होते हैं, लेकिन इसमें कोई फी नहीं है।
2: yes,
1: इसमें कोई वॉन्ट टू पब्लिश तो आपका विदाउट फी जो है पब्लिश हो जाता है, तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम मीडिया और मास कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए कि वो अपनी पब्लिकेशंस करवाएं और एटलीस्ट वो इस चीज़ को नॉलेज भी रखते होंगे कि हमारा वाई कैटेगरी का रिकग्नाइज जर्नल है, तो इसमें पब्लिकेशन करवाने से उनकी ही रिसर्च का जो एक ग्राफ है वो ऊपर जाएगा।
2: बिल्कुल ऊपर जाएगा। फॉर इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स एंड जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हमने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स और W में कराने होते हैं, दो देयर आर क्राइटेरियाज जो हमारी प्रमोशंस के लिए या अप्रेजल्स के लिए ज़रूरी हैं, बट आपने सर्टेन क्वान्टिटी भी मीट करनी होती है तो आप Y में भी करा सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आप अभी राइटिंग सीख रहे हैं, तो आप जो है वो एकेडमिक जर्नल्स में एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पे जो है वो पब्लिश करवाएं।
1: और मैम ये प्रोसेस कितना थका देने वाला होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं, मैं देखती हूँ यूजुअली आपका ऑफिस मेरे करीब ही है तो मैं देखती हूँ कि आप सारा वक्त सिर्फ काम कर रही होती हैं, जब से आती हैं तब से जब तक मैं जाती नहीं हूँ शायद आपके जाने तक आप सिर्फ लैपटॉप पे चीज़ों को रिव्यू कर रही होती हैं। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, अब ये मीटिंग है, अब वो सेमिनार है, वो वर्कशॉप है, कैसे कर लेती हैं मैनेज, कैसे ये प्रोसेस थकाने वाला नहीं होता?
2: हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो है वो मशीनरी भी थक जाती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो इंसान भी थकना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने फिर वही मैं कहूँगी कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और आपको जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती रहती है। जैसे अभी आपकी बात से ही मैं मोटिवेशन ले रही हूँ कि इफ़ आई हैव बिकम सर्टेन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई कोलीग्स, तो ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूँ और मैं अपने आप को इस फील्ड में जो है वो और एक्सपर्ट बनाऊं, ताकि मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स भी एज एन एग्जांपल मुझे सेट करें और वो इस फील्ड में आए और आगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं।
1: वैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो आके बताते हैं कि डॉक्टर सदफ ज़ारा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये जो प्रोसेस है आपका रिसर्च का, ये प्रोसेस जो एज एन एडिटर है, ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से एज ए रिसर्चर और एज ए एडिटर काम करना?
2: जब मैं खुद रिसर्चर थी तो मैं खुद थक जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल जर्नल्स, अभी भी जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, उनका जो पब्लिकेशन प्रोसेस है इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 and 2 years टू पब्लिश, जिसमें आपको मल्टीपल रिविजन्स जो है वो करनी पड़ती हैं, एंड देन इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपका पेपर और आपका पेपर पब्लिश करेंगे। लेकिन जब मैं खुद इस प्रोसेस में पार्ट बनी हूँ, जब हमारा जर्नल स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज मैनेजिंग एडिटर, और क्योंकि मैं चीज़ें मैनेज कर रही थी और बेसिकली इसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट है यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं लोएस्ट से लेके मैक्सिमम तक जो है वो मैं मॉनिटर कर रही होती थी, मैं उस प्रोसेस का पार्ट बनी, तो मुझे पता चला कि येस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि उनके पास सबमिशंस भी उसी तरह से आ रही होती हैं हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में, तो हर एक को जो है वो पूरे प्रोसेस से गुजारना और फिर उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करना, दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। और आप उनकी खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि यस उनके जो जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक के एच ई सी भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो इस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम भी जो है वो अपने जर्नल में इस क्वालिटी को मेंटेन करें और एक अच्छी एग्जांपल जो है वो सेट करें।
1: और मैम ये बताएंगे कि हमारी जो जर्नल की पब्लिकेशन है वो क्या क्वार्टरली है या मंथली है या किस रिलीवेंसी में?
2: इट इज़ बाई एनुअल, और हम साल में जो है वो दो दफ़ा पब्लिश करते हैं, एंड राइट नाउ अभी जो हमारा कमिंग है जो हमने जून में पब्लिश करना है वॉल्यूम 3 का इशू नंबर 1, उसके लिए हमारा कॉल फॉर पेपर्स ओपन है, तो इंक्लूडिंग यू एंड अदर स्टूडेंट्स जो कि बीएस के या एमफिल के या पीएचडी के हैं या कोई भी मीडिया के फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम कि वो ज़रूर हमारे जर्नल में जो है वो अपनी पब्लिकेशन सबमिट कराएं, एंड देन हम ज़रूर देखेंगे उस प्रोसेस।
1: आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे, तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फैकल्टी आर, बहुत मज़ा आया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
2: थैंक यू सो मच मिस मरियम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी ढेर सारी तारीफें सुन के, और मैं खुद भी यहाँ से मोटिवेट होकर जा रही हूँ।
1: एक्चुअली ये तारीफें वैसे ही नहीं की गई, बिकॉज मैं देखती हूँ जब से मैं यहाँ एज इन फैकल्टी का पार्ट हूँ, मैंने देखा है हर फैकल्टी मेंबर को, हमारी फैकल्टी इतनी बेस्ट और इतने अच्छे से सब काम करते हैं, तो हर किसी की कहीं ना कहीं पे जो इनपुट्स हैं एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना बनता है, और फैकल्टी आर का प्रोग्राम होता है इसलिए ताकि हम अचीवमेंट्स की बात करें, हम मीडिया के ट्रेंड्स की बात करें, हम स्किल्स की बात करें, हम ऐड और पीआर की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। सो इसी के साथ सामाइन आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम और एक नए अच्छे से गेस्ट के साथ आपके साथ होंगे। सुनते रहे FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, और आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर सदफ ज़ाहरा।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: वही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

जंग चणु चुप चुपी ता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सिया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बार असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आ इक इकलू असा खुद नू भुले सावला सा हरदम जपया तू।

कसीदा हक दे बलीदा, सारे सुनाओ नारा अलीदा। झुकिया मैं डरते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली। पै लोग आखंड मैं कू कलंदर।

सोनिया मस्त रुत बसंती अंदर माही जलवा आन बिखाया बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिस दे मस्त ओ ना डरदा दोजख बोलो ना लालच जन्नत दा रखे।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।